0: है हौसले कहाँ जा को कतलो चाप को चल गो मेरे को जो हौसले माने दिने शर की छे मो सवारे सोदाने सरहदाल बिराबर गनिया शेव देखो दे जारे कफते सर मिले कुरे में बितने मारे सार सग माने माला भावे मावदाला खुदे सार में पियाए माला भावे मावदाला खुदे कोल में कोल वेद चने दिने शर सोदान आवा बिराबर गनिया शेव देखो दे दें गे मेरा निया कुरे में जबराना हाथ वो माने तालिया भी आवे काल मेर ये तदस्ते फिर मेरे फरहुदान या सरदारे वे कुतर में
1: I'm going to go to the hospital.